दोस्तों साथियों आपको स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के से लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं प्रेम डॉक्टर विनेश। ये हमारा 697 था जो शो है विद अपलाइन से मीडिया और फ्रीक्वेंसी 96.9। अगर आप गाड़ी में हो तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस, बट प्लीज बी केयरफुल ऑन द रोड। से जी हाँ, सभी का हम स्वागत करते हैं इस सुहानी शाम में। क्रश है, थोड़ी ठंड हो चुकी है बाहर, लेकिन दिन में वेदर काफ़ी बढ़िया था। और ये जो आज हमारा प्रोग्राम है, हम इस प्रोग्राम को डेडिकेट करेंगे आशा भोसले जी की याद में। और हमारा जो भी टैलेंट शो भी होता जलसा टैलेंट सीरीज सीजन 5 एपिसोड 3 भी काफ़ी बढ़िया गया थर्सडे को। और उसमें जो गायिका थे यानी कि आर्टिस्ट थे अंजलि जी और निशिभात ने बहुत खूबसूरती से जो गीत अदा किया था, और साथ साथ में कुछ ड्यूट्स भी थे जिसमें अनुराग छा रहे थे। और साथ साथ में हम डेनी और टी नंदन जी को भी याद करेंगे जिन्होंने भी एक संगीत उसमें प्रदान किया था। तो चलो तो बढ़िया से गया, लेकिन आज के लिए ये सफ़र में फिर हम कुछ कोशिश करेंगे कुछ गीत सुनाने के लिए जो आशा ने गाए थे। और आशा के विषय में बात हम करना चाहेंगे, और इसके लिए हमारे जो स्टूडियो में ऑलरेडी पहुँच चुके हैं चेतना जी और साथ साथ में अनुराग। अनुराग शायद आज थोड़ा कम बात करेंगे, उसकी जो तबीयत उतनी ठीक तो नहीं है, शायद उसने कुछ ज़्यादा ही गाना गा लिया था थर्सडे को। लेकिन चेतना जी ही इज़ प्रिपेयर, थैंक यू फॉर कमिंग। हम इनसे भी सुनेंगे और हम आशा जी के विषय में बात करेंगे, उसके जो आई थिंक सफ़र है, हम ज़्यादा करके फोकस करेंगे ऑन हर करियर, लाइक जो सॉन्ग्स उसने गाया है और काफ़ी खूबसूरती के साथ में उसने काफ़ी हम कहेंगे वर्सेटाइल जो सिंगर थी, और हर तरह के हम कहेंगे गाना उसने गाए, बट उसके जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो चेतना जी आज देने वाली है। और भी हम इंतज़ार कर रहे हैं, और एक गेस्ट हमारे साथ में जुड़ने वाली है जो अंजलि, और हम आशा करते हैं कि अगर वो हमें गाड़ी में सुन रही है तो आप पहुंचिए, फिर हम आपसे भी गाना गवाएंगे। और एक चीज़ और बतला दें कि अगर आप जाने की कोशिश करो या जाना चाहते हो तो जी हाँ, एक जो प्रोग्राम आज हो रहा है इन द डिवाइन प्रेजेंस ऑफ सिद्धगुरु सिद्धेश्वर ब्राह्म ऋषि गुरुदेव, उसका जो प्रोग्राम है यहाँ रोल्स्टन में, तो वहाँ भी आप जा सकते हो। रोल्स्टन कम्युनिटी सेंटर अभी भी समय है, आई थिंक वो लोग 9 PM तक वहाँ पे चलेगा। तो अगर इफ यू डू वांट टू गो देयर यू कैन। और साथ साथ में हमारे पास और भी जो समाचार है हम आपके साथ में शेयर करते चलेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सुपर सीरीज का जो गेम अभी चल रहा है लाइव फिजियन रुआ और हाइलैंडर्स के बीच में, आई नो हमारे साथ में शिवनील भी शामिल है ऑब्वियसली फिजी, और रग्बी में उसका जो दिलचस्प है। तो शिवनील, अभी अनफॉर्चुनेटली हाइलैंडर्स अब जीतना शुरू कर दिए हैं, तो 14-12 अब इसको है। तो चलो हम एक गीत आपको सुनाते हैं, फिर हम जो ये इंटरव्यू आप कह सकते हैं, हाँ बातचीत हम शुरू करेंगे जहां हम चेतना जी और अनुराग से बात करेंगे इस गीत के बाद में।

0: जी हाँ दोस्तों साथियों, आशा करते हैं कि जो गीत अभी आप सुन रहे थे, जो आशा भोसले ने बहुत खूबसूरती के साथ में अदा किया था 1957 की बात है, और बहुत ही जो बेहतरीन गीत था, जो आज भी आई थिंक अगर आप इस गीत को सुनेंगे तो वो जो फ्रेशनेस है, एनर्जी अभी भी आपको जो मिलेगी। तो चलो हमारे जो गेस्ट है बिल्कुल तैयार आज बात करने के लिए, तो चलो हम शुरू करते हैं चेतना जी से। तो आप बताइए चेतना जी, अभी आप कैसे महसूस कर रहे हो?
1: परफेक्ट, बहुत खुश टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आके हमेशा की तरह, और फीलिंग ब्लेस्ड टू बी एबल टू स्पीक अबाउट आशा भोंसले जी।
0: थैंक यू सो मच चेतना जी। और अंजलि जी, आप बताइए, आपका क्या मिजाज है?
2: आशा भोंसले जी के बारे में बात करना ही अपने आप में एक बहुत सुकून वाली बात है, तो मैं ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि आज मुझे मौका मिला उनके बारे में रेडियो पे बात करने का। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी विनेश जी।
0: जी हाँ, और अनुराग जी, हम आपसे कितना बात कर सकते हैं आज?
3: देखिए जितनी क्षमता में बात करूँगा, सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ विनेश जी कि आपने आशा जी के बारे में प्रोग्राम होस्ट किया है और उसमें हमें इन्वाइट किया है। वी आर रियली ग्रेटफुल। आशा जी के लिए कुछ बोलना यानी सूरज को दिया दिखाने जैसी बात होगी, तो इसमें हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़े। डेफिनेटली वी आर लकी एंड फील ब्लेस्ड। सो जलसा फीजी रेडियो के श्रोताओं को सबसे पहले हमारा प्यार भरा नमस्कार। और हमने पीछे 12 तारीख को इसी महीने, अब तो पिछले महीने 12 तारीख को आशा जी को खो दिया, तो हमारे इंडियन म्यूजिक का, बॉलीवुड का एक सितारा हमने जो उस लेजेंडरी

0: एरा का जो आखिरी सितारा अब तक था हमने वो भी खो दिया, तो वो हमेशा हमारी सांसों सांसों में बसी रहेंगी। आशा जी, आशा जी के बारे में मतलब अभी तो हम मतलब बात वही है कि उनके बारे में बोलना शुरू भी नहीं किया है और हमें ये लग रहा है कि क्या हम जस्टिस भी कर पाएंगे उनके बारे में कुछ बोलने के बारे में। आई रियली डू नॉट नो। हम मेरी तरफ से हम जो भी कुछ उनके बारे में हम शेयर कर पाए, हमारा एक छोटा सा ट्रिब्यूट होगा। तो विनय जी के साथ हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं कि हम और क्या गीत आपको सुनाएंगे, और जैसे गीत जो खत्म होगा हम नेक्स्ट जब अपने जो गेस्ट अंजलि है, चेतना है, अनुराग से हम जब बात करना शुरू करें, दिस व्हेन वी आर गोइंग टू स्विच लाइव, हम फेसबुक लाइव भी कर देंगे ताकि जो लोग हमें वीडियो पे देखना चाहें या तो फिर अंजलि और चेतना है, अनुराग है, यू कैन गेट एंगेज्ड विद अस। तो हम फेसबुक लाइव करने वाले हैं, तो आई विल प्ले दिस सॉन्ग, आप सुनते रहें, तब तक हम तैयार होते हैं लाइव वीडियो के लिए।